0: your song.
1: Only on City FM 89. City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City
4: FM 89.
2: This show is brought to you by Dettol.
5: City FM 89.
6: Trending today.
7: Lionsgate has officially announced that John Rambo, a highly anticipated prequel to the iconic First Blood series, will hit theaters on June 4, 2027. The studio confirmed the release date alongside a new teaser poster featuring the franchise's signature red lettering, making it clear that the film will be an exclusive theatrical event rather than a streaming play. Stepping into the role made famous by Sylvester Stallone is Noah Centineo, who will portray the younger version of the cinematic soldier.
8: FM 89. You got me going crazy.
9: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर गाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
10: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
11: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
12: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
13: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
14: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
15: ना किदार ना इंतजार, अब सफर होगा स्मार्ट सिर्फ एयरब्लू के साथ। एयरब्लू मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें, अपना टिकट बुक करें, अपनी पसंदीदा सीट का इंतखाब करें और ऑनलाइन चेक इन करें आसानी के साथ, कभी भी कहीं भी। ऐप स्टोर या गूगल प्ले से अभी एयरब्लू ऐप डाउनलोड करें और पाएं फ्री टिकट्स जीतने का मौका।
14: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
16: क्लाइमेट चेंज अब कोई दूर का खतरा नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो दुनिया भर की मईशत, माहौल और इंसानी जिंदगी को मुतासिर कर रही है। पाकिस्तान, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा, इस खतरे की पहली सफ में खड़ा है, जहां सैलाब, ग्लेशियर फटने के वाकयात, शदीद गर्मी, खुश्कसाली और फजाई आलूदगी जैसे मसाइल तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ने माहौलियाती तहफ्फुज में एक मिसाल कायम की है। बिलियन ट्री और 10 बिलियन ट्री जैसे मंसूबों ने सूबे में जंगलात के रकबे में नुमाया इजाफा किया। आज सूबे के जंगलात न सिर्फ माहौल को महफूज बना रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के कार्बन अखराज को कम करने में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। साफ तवानाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, जदीद फजाई निगरानी और माहौल दोस्त इकदामात एक सरसब्ज और महफूज मुस्तकबिल की तरफ अहम कदम है। आए हम भी दरख्त लगाएं, आलूदगी कम करें और अपने माहौल के तहफ्फुज में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि आज का फैसला आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तय करेगा।
17: ये पैगाम महकमा इत्तला'आत व ताल्लुकात आमा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पेश किया गया।
18: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी, आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।
19: ड्यूलक्स, ड्यूलक्स, ड्यूलक्स।
20: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
21: ये क्या है भाई?
20: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
22: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
20: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
16: क्लाइमेट चेंज आज पूरी दुनिया के लिए एक संगीन चैलेंज बन चुका है। शदीद गर्मी, बेवक्त बारिशें, सैलाब, खुश्कसाली और फजाई आलूदगी इंसानी जिंदगी और माहौल को मुतासिर कर रहे हैं। पाकिस्तान, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा, इन मौसमी तब्दीलियों के असरात को शिद्दत से महसूस कर रहा है।
0: लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद सूबे में बिलियन ट्री सुनामी और 10 बिलियन ट्री प्रोग्राम जैसे मंसूबों के जरिए जंगलात में इजाफा किया गया, जो माहौल के तहफ्फुज और कार्बन के इखराज को कम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। साफ तवानाई, सोलराइजेशन और माहौल दोस्त इकदामात एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद है। आए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, पानी और बिजली का ज़िया कम करें और अपने माहौल को साफ रखें, क्योंकि आज का एक मुस्बत कदम कल आने वाली नस्लों के लिए महफूज और सरसब्ज मुस्तकबिल की जमानत बन सकता है।
17: ये पैगाम महकमा इत्तला'आत और ताल्लुकात आमा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पेश किया गया।
4: City FM 89.
6: We are playing your song.
23: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
3: ये क्या है भाई?
4: एक, जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को 3 installments में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
1: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
5: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
6: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
7: A new era begins.
8: City FM 89.
9: We're playing your song.
1: You're listening to
10: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 4 PM.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: Lionsgate has officially announced that John Rambo, a highly anticipated prequel to the iconic First Blood series, will hit theaters on June 4, 2027. The studio confirmed the release date alongside a new teaser poster featuring the franchise's signature red lettering, making it clear that the film will be an exclusive theatrical event rather than a streaming play. Stepping into the role made famous by Sylvester Stallone is Noah Centineo, who will portray the younger version of the cinematic soldier.
7: City FM 89.
8: तुम कभी ना झुके मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
9: Obesity आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
10: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
11: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
1: सिटी FM 89. You're listening to
0: Non-stop hits.

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क। इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज।
2: क्लाइमेट चेंज आज पूरी दुनिया के लिए एक संगीन चैलेंज बन चुका है। शदीद गर्मी, बेवक्त बारिशें, सैलाब, खुश्कसाली और फजाई आलूदगी इंसानी जिंदगी और माहौल को मुतासिर कर रहे हैं। पाकिस्तान, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा, इन मौसमी तब्दीलियों के असरात को शिद्दत से महसूस कर रहा है। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद सूबे में बिलियन ट्री सुनामी और 10 बिलियन ट्री प्रोग्राम जैसे मंसूबों के जरिए जंगलात में इजाफा किया गया, जो माहौल के तहफ्फुज और कार्बन के इखराज को कम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। साफ तवानाई, सोलराइजेशन और माहौल दोस्त इकदामात एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद है। आएं, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, पानी और बिजली का ज़िया कम करें और अपने माहौल को साफ रखें, क्योंकि आज का एक मुस्बत कदम कल आने वाली नस्लों के लिए महफूज और सरसब्ज मुस्तकबिल की जमानत बन सकता है।
3: ये पैगाम महकमा इत्तला'आत और ताल्लुकात आमा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पेश किया गया।
4: Hello guys and welcome to The Rush Hour. I'm your host ABD and guess what? It is finally Wednesday. It is the middle of the week. We are just 2 days away from the weekend. It is the 3rd of June today and guess whose birthday it is? Rafael Nadal, my absolute favorite tennis player. Yes, I loved Federer, but I think Nadal is just an OG you cannot dislike. I remember his 2012 match with Djokovic, which was 6 hours. And I remember I was so bored because I was watching with my father. You know, the first few hours I enjoyed it. Then by the end of it, I was like, dude, can this end soon? But then it ended and it was an absolutely fantastic match and a brilliant memory with my father. Enjoy the next few songs. When we come back, we will be discussing today in history on the 3rd of June.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 p.m.
4: You're listening to City FM 89.
5: This show is brought to you by Jazz.
6: City FM 89.
5: This show is brought to you by Dettol.
7: तुम कभी ना झुकी मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
8: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive, and chronic disease.
9: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
10: ना किदार ना इंतजार अब सफर होगा स्मार्ट सिर्फ एयरब्लू के साथ एयरब्लू मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें अपना टिकट बुक करें अपनी पसंदीदा सीट का इंतखाब करें और ऑनलाइन चेक इन करें आसानी के साथ कभी भी कहीं भी ऐप स्टोर या गूगल प्ले से अभी एयरब्लू ऐप डाउनलोड करें और पाएं फ्री टिकट्स जीतने का मौका।
11: क्लाइमेट चेंज अब कोई दूर का खतरा नहीं बल्कि एक हकीकत है जो दुनिया भर की मईशत माहौल और इंसानी जिंदगी को मुतासिर कर रही है। पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा इस खतरे की पहली सफ में खड़ा है जहां सैलाब ग्लेशियर फटने के वाकयात शदीद गर्मी खुश्कसाली और फजाई आलूदगी जैसे मसाइल तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ने माहौलियाती तहफ्फुज में एक मिसाल कायम की है। बिलियन ट्री और 10 बिलियन ट्री जैसे मंसूबों ने सूबे में जंगलात के रकबे में नुमाया इजाफा किया। आज सूबे के जंगलात न सिर्फ माहौल को महफूज बना रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के कार्बन अखराज को कम करने में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। साफ तवानाई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जदीद फजाई निगरानी और माहौल दोस्त इकदामात एक सरसब्ज और महफूज मुस्तकबिल की तरफ अहम कदम है। आए हम भी दरख्त लगाएं आलूदगी कम करें और अपने माहौल के तहफ्फुज़ में अपना किरदार अदा करें क्योंकि आज का फैसला आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तय करेगा।
12: ये पैगाम महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पेश किया गया।
13: पीडियाश्योर से आईलीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस्ड न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर।
14: एक दो तीन येलो एक दो तीन येलो
15: ये क्या है भाई?
16: एक जैकेट शूज हो या वॉच जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैज कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
17: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो येलो बाय जैज कैश।
16: अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
18: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क। इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज।
2: सिटी एफएम 89 वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
0: यू आर लिसनिंग टू द

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City
2: FM
1: 89.
2: This show is brought to you by Dettol.
1: City FM 89.
4: Dulux दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
5: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर, जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स, रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर, क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
6: 1, 2, 3 येलो, 1, 2, 3 येलो.
7: ये क्या है भाई?
6: 1, जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. 2, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और 3, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
1: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 PM.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show was brought to you by Jazz.
2: City
3: FM
1: 89.
3: This show is brought to you by Dettol.
1: City FM 89.
5: Coming up next.
1: Dark Room.
2: City
3: FM
1: 89.
5: Trending today.
6: Lionsgate has officially announced that John Rambo, a highly anticipated prequel to the iconic First Blood series, will hit theaters on June 4, 2027. The studio confirmed the release date alongside a new teaser poster featuring the franchise's signature red lettering, making it clear that the film will be an exclusive theatrical event rather than a streaming play. Stepping into the role made famous by Sylvester Stallone is Noah Centineo, who will portray the younger version of the cinematic soldier.
7: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
8: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
9: Pediasure से आइलीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ, ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर।
10: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो,
11: ये क्या है भाई?
10: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैज कैश पर ये लो से पेमेंट करो, और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
12: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जैज कैश।
10: अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
13: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क। इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज।
2: City
1: FM 89.
14: Hold on, special delivery coming through.
15: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
16: We're now live on WhatsApp.
17: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
16: It's as easy as 03142-898989.
15: Save our number now and WhatsApp us.
5: You're listening to City FM 89.
2: We're playing your song.
18: Hello there, folks. Welcome to another episode of The Dark Room. I'm Tapu Javeri, and we have some incredible music in store for you. I hope you all are playing safe and definitely staying out of the horrible heat. It is, I think, 34, feels like 44, but definitely is too hot. But we're going to make it hotter in here in the dark room with playing you some fabulous music. Coming out of the Robert Altman movie Pret-a-Porter, this is the Cranberries with Pretty.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Dettol.
4: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
5: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो.
6: ये क्या है भाई?
5: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
0: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Dettol.
1: City 89.
3: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
4: ये क्या है भाई?
5: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
1: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
6: पीडियाश्योर से आइलीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ, ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर.
7: Hold on, special delivery coming through.
8: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
3: ड्यूलक्स, ड्यूलक्स, ड्यूलक्स.
4: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो.
5: ये क्या है भाई?
4: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
1: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
6: द ओल्ड कम्यूट इज ब्रोकन. We're just here to help you override it.
7: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
8: A new era begins.
1: City FM 89.
9: Your drive-along companion.
1: You're listening to
10: Dark Room with Tapu Javeri.
11: City FM 89, Tapu Javeri, The Dark Room. I am a big fan of Whitney Houston, but for me, always, this track is always Chaka Khan. This is Chaka Khan with I'm Every Woman.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
2: ये क्या है भाई?
3: एक, जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
5: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
0: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
6: A new era begins.
7: City FM 89.
8: On the dial. You're listening to
9: Future Sounds.
8: Future Songs.
10: Vibe with us, your music.
11: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 p.m.
3: City FM 89.
4: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
5: ये क्या है भाई?
6: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
1: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
7: You're listening to City FM 89.
8: We're playing your song.
1: You're listening to
9: Future Sounds.
8: Future Sounds.
10: Stay fresh, stay lit.
11: New music drops right here.